दोस्तों, मैं हूँ आरजे आकांक्षा और लेकर आ रही हूँ आपके लिए प्यार भरी आवाज लाइव प्रोग्राम, जो सिर्फ एक गीत ही नहीं, एक जज्बात और एक सुकून होगा और सबसे खास सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के करीब होगा। तो सुनना मत भूलिए प्यार भरी आवाज सिर्फ और सिर्फ आरजे आकांक्षा के साथ। हर सुर मोहब्बत, हर बात में सुकून, हर बात में सुकून। हर ट्यूसडे सुबह 11 बजे कॉल 0474-293-1111। सिर्फ कम्युनिटी रेडियो बेंसिकर 107.8 पर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? एक नई मुस्कान और एक नई एनर्जी के साथ आप सबका प्यार भरी आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मूड हमेशा की तरह एकदम मस्त होने वाला है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे आकांक्षा और आप सुन रहे हैं रेडियो पेंसिकर 107.8 पर। जानती हो आज थोड़ा सा मेरा आवाज़ अलग आ रहा होगा क्योंकि मुझे बहुत सर्दी हो गई है। लास्ट संडे को मैं अपनी फैमिली के साथ कुटीकारम गई थी वाटरफॉल्स एंजॉय करने के लिए और फिर वहाँ पे थोड़ी सी ठंड लग गई, बट द वेकेशन वॉज वर्थ इट विद माई फैमिली। तो आप भी कभी उस साइड जाइएगा, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। तो वैसे अब चाहे दोस्तों शो शुरू करने का वक्त आ गया है, तो अब चाहे घर पे हो या कहीं और या कहीं काम पे, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शुरू हो चुका है प्यार भरी आवाज़ और बजेंगे खूबसूरत से गाने और बहुत सारी प्यार भरी बातें, मेमोरीज और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स। तो रेडी हो जाइए क्योंकि आज का सफर थोड़ा होने वाला है फिल्मी, नॉस्टैल्जिया और बिल्कुल दिल से भरा। तो चलिए शुरू करते हैं सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन 107.8 पर प्यार भरी आवाज। कीप लिसनिंग।

0: क्या खूबसूरत सा गाना है ये, क्यों सही कहा ना दोस्तों, ये बहुत पॉपुलर मूवी से है, उसमें उसका नाम है चमेली और जिसे गाया है सुनिधि चौहान जी ने। वैसे दोस्तों कुछ गाने सिर्फ कानों तक ही नहीं, वो दिल तक भी सीधा ऐसे पहुंच जाते हैं, जैसे हमने किसी खास को अपने दिल के पास संभाल के रखा हो और जब दिल में किसी अपने की याद हो तो हर धुन बस यही कहता है सजना वे सजना। आप सुन रहे हैं मेरे साथ प्यार भरी आवाज़ और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे आकांक्षा। टाइम आ गया है अपने फेवरेट गाने मेरे साथ सुनने का, तो डायल करें 0474293111 पर, 0474293111 पर। मिलते हैं आज के फिफ्थ पहले कॉलर से। हेलो
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग,
0: कौन बात कर रहा, कहाँ से दोस्त?
1: मेरा नाम पीजी है।
0: आपका आवाज कट हो रहा है। हेलो
1: हेलो
0: जी, बोलिए, बताइए आपका नाम।
1: कार्तिक पीसी।
0: ओके, प्यार भरी आवाज में आपका स्वागत है दोस्त।
1: मेरे को आज प्रेम की गजब कहानी, तू जाने ना,
0: तू जाने ना। ओके, वैसे दोस्त आप क्या करते हैं?
1: मैं चुड़ैल हूँ।
0: ओके, और आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं पेरुमन से। पेरुमन।
0: पेरुमन, ओके। और कैसे दिन जा रहा है आपका? हाउ इज योर डे गोइंग? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आई थिंक कॉल कट हो गया है। कोई बात नहीं। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं, तो उन्होंने अभी उनका फेवरेट सॉन्ग बता दिया है, तो चलिए सुनते हैं तू जाने ना फ्रॉम अजब प्रेम की गजब कहानी। बड़ी कॉमेडी मूवी है ये और बहुत खूबसूरती से गाया है अतीफ असलम जी ने, तो चलिए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना।

0: ट्यूसडे का दिन है प्यार भरी आवाज का, खुशियों गीतों और दिल से दिल तक पहुंचने वाली बातें और गानों का। डायल करें मेरे साथ 0474-293-1111 और मौका पाइए मेरे साथ फेवरेट गाने सुनने का। डायल करें 0474-293-1111 पर। मिलते हैं अगले कॉलर से और सुनते हैं उनकी फेवरेट गानों की फरमाइश। हेलो।
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: हाँ ठीक है।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? नाम बताइए आपका।
1: मेरा नाम है तंगपन पनेम।
0: ओके तंगपन जी, कैसे हैं? कैसे दिन जा रहा है आपका?
1: फिर से प्यार करते हैं हमको सनम।
0: कौन सा गाना?
1: फिर से प्यार करती है हमको सनम।
0: ओके ऑल राइट, तो ये रहा आपका गाना ओनली ऑन 107.8 प्यार भरी आवाज। कीप लिसनिंग।

0: बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कितनी सिंपल सी बात है ना दोस्तों, लेकिन जब दिल से, ये जो सिंपल सी बात है जब दिल से निकलती है तो सामने वाला या सामने वालों की दुनिया सबसे खूबसूरत बन जाती है। तो अगर आपने भी किसी अपने खास पर्सन को याद किया है इस खूबसूरत सी आवाज़ जो ये अनुराधा जी की आवाज़ है, एवरग्रीन मेलोडी सबसे खूबसूरत वाली, तो फिर दिन ही बन जाता है। ऐसे कितने प्यारे प्यारे इंडस्ट्री में बहुत मीठी मीठी आवाज़ें, जैसे अलका जी, अनुराधा जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, आशा जी, लता दीदी, ढेर सारी खूबसूरत, मतलब बहुत ही ब्लेस्ड आवाज़ों से हम लोगों को आज, मतलब आजकल इतनी खूबसूरत सी आवाज़, जैसे श्रेया दीदी भी है, बहुत सारे खूबसूरत मेलोडीज वॉइस के साथ आज जो भी, आज हमारा जो कभी भी हम लोग जब भी स्ट्रेस में होते हैं या दिन अच्छा जाता है, जो कुछ भी है, एक खूबसूरत सा इन्हीं आवाज़ों में से किसी भी एक आवाज़ सुन ले हम किसी गाने की तरफ से, सो इतना अच्छा लगता है, दिन भी अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। तो बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ, अपने डायल करिए 0474-293-1111 पर। हेलो
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग आकांक्षा। आकांक्षा, ये बात करने का टाइम है ना, आदमी लोग सुनता नहीं है लगता है, इसके लिए आप बोलने का टाइम, आदमी पता नहीं वो लोग सुनता नहीं है हमारे को लगता है, साउंड बहुत कम दी यार
0: अभी, ठीक
1: के लिए हमारे को लगता है ऐसा है। हेलो,
0: हेलो, हाँ बोलिए।
1: हाँ अभी हम बोलते हैं, और हम एक गाना बोला था ना, और कैसा है आकांक्षा?
0: एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, थोड़ी सी सर्दी हो गई है, ठीक है।
1: मलयालम प्रोग्राम बीच में दो दिन ऐसा हिंदी प्रोग्राम आने के टाइम में बहुत खुशी है यार, क्यों पूरा टाइम मलयालम चलता है ना, उसके बीच में थोड़ा टाइम हमारे को हिंदी बात करने के, खुशी करने के लिए गॉड का ब्लेसिंग है यार। अच्छा
0: मैं ये बात सुन के बहुत खुश हूँ कि आपको
1: बहुत अच्छा है, आप लोग का दोनों के लिए हम ब्लेसिंग बोलते हैं।
0: शुक्रिया शुक्रिया,
1: ऐसा रहना मंगता जिंदगी तक। और क्या बोलेगा, ये चक का गाना बोला था ना।

0: देखो।
1: क्या
0: ओके
1: बात है देवदास जी, क्या बात है। वैसे बताए, अगर इंसान ने होना चाहिए मन मौजी आपके जैसे होना चाहिए, गाते रहो चाहे सुर लगे ना
0: नहीं,
1: लगे।
0: हमारे को इतना कुछ ही क्यों मालूम है, हमारे को भी इतने थोड़ा ऐसा बात करेगा थोड़ा
1: आपकी जब भी
0: वो
1: आवाज
0: नहीं
1: मैं सुनती
0: गाएगा
1: हूँ
0: तो
1: ना,
0: भी हम रुकता है यार,
1: जो जो जब भी
0: हम
1: आपकी आवाज सुनते हैं ना, हम सब लोग पूरा
0: ठीक
1: समझ में आता है कि आप दिल से गाते हो, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए।
0: है यार, ठीक है, अच्छा अच्छा है, हम लोग को ब्लेसिंग है, कभी भी ऐसा रहेगा, हम भी खुशी रहेगा, हो सकता है ऐसा। तो कभी कभी वो एस्केप नहीं करो, रोज आने के लिए कोशिश करो।
1: जी, थैंक यू सो
0: थैंक
1: मच,
0: यू,
1: बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और आपका दिन शुभ हो। तो सुनते हैं ये आपका फेवरेट गाना, ओनली ऑन प्यार भरी आवाज 107.8 पर। कीप लिसनिंग।

0: जैसे चाय हो या कॉफी, वैसे ही ऑफिस हो या घर, दोस्तों हर जगह म्यूजिक जरूरी है। और अपनी फेवरेट होस्ट के साथ सुनने में क्यों देरी है, डायल करें 04742931111 पर, 04742931111 पर, पाइए मौका मेरे साथ सुनने के लिए अपने फेवरेट गाने। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से?
1: इबिन कामकुलम से।
0: प्यार भरी आवाज में आपका स्वागत है दोस्त, कैसे हैं आप?
1: कैसे हो आप?
0: एक मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए आपका हालचाल।
1: ट्रिपल ठीक है।
0: ट्रिपल ठीक है तो मैं चार गुना ठीक हूँ। तो आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: रात फिल्म की जो भी कसमें।
0: ओ वाओ, जो भी
1: कसमें
0: क्या बात है।
1: वादा किया तो जो मिलते तूने ही जीवन में लाया तेरे सवेरा। हाँ तुम्हें याद है।
0: हाँ मुझे याद है।
1: क्या तुम्हें याद है?
0: क्या बात है, ये रहा मैं अभी आपका ये फेवरेट सॉन्ग, ये लगा दूंगी। ओनली ऑन 107.8 कर कॉल करने के लिए शुक्रिया। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना, मेरा ही नहीं आपका भी फेवरेट होगा, तो चलिए मिलकर सुनते हैं।

This was the beautiful yet another beautiful duet Alka ji aur Udit Narayan ji ki awaaz mein jo bhi kasme वो फ्रॉम मूवी राज। वैसे दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग कॉल करते हैं और कुछ दो लाइनें गाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। तो जुड़िए मेरे साथ ऐसे ही और कुछ दो लाइनें गाइए, डायल करें 0474-293-1111 पर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा दोस्तों। मैं यू गई और यू आई, प्यार भरी आवाज़ कुछ समय में आ जाएगा। कीप लिसनिंग।

0: സെൻസസിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വീടുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കലും വീടുകളുടെ സെൻസസും നടത്തും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ വീടിന്റെയും കണക്കെടുക്കും. വരൂ, നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഇത് വിജയിപ്പിക്കാം. എല്ലാ വ്യക്തികളും ചേരുക, എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും പങ്കുചേരുക. രാജ്യം മുന്നേറട്ടെ. സെൻസസ് 2027, നമ്മുടെ സെൻസസ്, നമ്മുടെ വികസനം.
1: प्यार भरी आवाज में आप सबका फिर से स्वागत है. तो अपना फेवरेट गाने रिक्वेस्ट कीजिए और बनाइए अपने दिन को स्पेशल. डायल करें 0474-293-1111 पर. मिलते हैं अगले कॉलर से, सुनते हैं उनकी फेवरेट गानों की फरमाइश. हेलो, गुड मॉर्निंग.
2: मॉर्निंग, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ. आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से, बताइए.
2: मेरा नाम टीनू.
1: ओके, और आप पहली बार कॉल कर रहे हो?
2: मैं फर्स्ट टाइम कॉल करता
1: हूं. ओके, तो वी ऑल वेलकम यू ऑन प्यार भरी आवाज विद लॉट्स ऑफ लव.
2: ओके ओके, आपके आप किधर से?
1: कहां से
2: आप, किधर से?
1: मैं पुणे से हूँ.
2: पुणे से?
1: जी.
2: ओके ओके, इसलिए अच्छा बात करता है.
1: शुक्रिया.
2: अभी केरला में किधर रहता है?
1: मैं केरला में कोल्लम में रहती हूँ. तो आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे शो पे?
2: ओ, दिलबर दिलबर वाला गाना.
1: अलका याग्निक वाला दिलबर दिलबर?
2: हाँ, मैं उसका एक लाइन गाएगा.
1: या तो एक क्या?
2: नहीं वाले.
1: कोई बात नहीं, एक क्या दो लाइन गाइए.
2: एक लाइन गाएगा. ओ दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर, दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर, होश ना खबर है एक ऐसा नसर है, होश ना खबर है एक ऐसा नसर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर, तुमसे मिलने के बाद दिलबर, दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर. ओके,
1: क्या बात है. वैसे ये गाना आपका फेवरेट है अलका याग्निक का?
2: हाँ, मुझको ये बात पहले से भी अच्छा लगता था. मैं पहले वो सीडी का गाना आने के टाइम मैं सीडी में डाल के सुनता था.
1: ओ वाओ, आजकल तो सीडी मिलती ही नहीं है, मतलब है बट बहुत कम लोगों के पास सीडी.
2: सीडी आने की वो फर्स्ट टाइम मैं निकाला था सीडी. आने के टाइम तो पकड़ के वही टाइम से मैं हिंदी वाला गाना सुनता था. मुझे मलयालम में ज्यादा हिंदी अच्छा लगता था गाना.
1: वाओ, वेरी नाइस. और ये भी बहुत पॉपुलर गाना है और बहुत सब बहुत सारे लोगों का फेवरेट है गाना. ये मेरा भी फेवरेट है. शुक्रिया फिर तो.
2: ओके,
1: ऑलराइट. और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत बढ़िया गाया है. तो चलिए मिलकर सुनते हैं अलका जी की आवाज में दिल पर. Only on Pyar Bhari Awaaz. Keep listening.

ये था बड़ा खूबसूरत सा गाना दिल पर, जिसे गाया है ऑफ कोर्स आपको ही पता होगा अलका याग्निक जी ने। तो दोस्तों मेरे जाने का वक्त आ गया है, इजाज़त दीजिएगा मुझे। बड़ा ही मज़ा आया आज आपके फेवरेट गाने सुनने के साथ साथ, और कुछ लोगों ने गाना भी गाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही वही वाइब ऐसे ही बरकरार रखेंगे और मिलेंगे अगले ट्यूसडे, वो भी सेम टाइम 11 बजे। और कहीं मत जाइएगा दोस्तों, अगले बार आप अपने और फेवरेट गाने लेके आइए, मिलकर सुनते हैं और मिलकर गाते हैं। इजाज़त दीजिएगा, जाने का वक्त आ गया है। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, साइनिंग ऑफ। आज ही आकांक्षा फ्रॉम प्यार भरी आवाज विथ लॉट्स ऑफ लव एंड बी काइंड टू एवरीबडी। कीप लिस्निंग प्यार भरी आवाज, रेडियो बेंजीगर 107.8 पर। टेक केयर, साइनिंग ऑफ।